गुणत मारागाववा बुद्धियाप जो सुख कंद। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षय

महाराजनी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सवनी जय जय जय। हाथ जोड़ी ने अपने स्वामी श्री स्मृति साथे श्लोक नु गान करिए।

सोता था, उपवास 2 लाख वजह सोई गया था। बापा क्या बाथरूम से आया, अरे क्या बोला स्वामी नाम हम तेव के युवक में आता युवक में पंता बापा है पग ना तरिया कदे चढ़ाए दे लाओ महिमा है चांस मिले तर ले लो बाकी हम था अमदार कोई हैरान नहीं कर पग ना टाटिया ऊंचा कर योगी अभी वो करते रहे साईं बापा प्रमुख साईं घा करी गए तब तुम खबर ना आओ है न तो है कोनो विघ्न नड़े क्या नड़े बधु पुते दास ना दास ना दास बद्दा थी नीचे कोई विघ्न नड़े नहीं जो ऊपर चढ़े न पोर आवे तो तने जाए बदा योगी आप जीव में कोतरे लिए थे जीव में नाने से नाने रही है जैसे नानी डूब घास पीस सब उड़ गया डूब खूब देखो कोतरे लो जा दास नीचा मुझे कोई कई बात करे ना ना ना तुम्हें मोटा से तुम अंतर दिया देखा उन्होंने तुम्हें मोटा से अंतर से अनंत ध्यान धारणा कर तो है अनंत माफ अगर ध्यान धारणा कर तो है एकदम भूत भविष्य कहतो है भूत भविष्य कहना है बता वीटी वाले फरी वाले को मारू को पर महाराज चौकड़ी मुटी अनंत ध्यान धारणा करतो है भूत भविष्य कहतो है अंतर नु जाणतो है तो कितनी मोटी सिद्धि का अंतर नु जाणतो है अनंत जीवनी नाड़ी जाणतो है अनंत जीवनी अनंत दुनिया में तो कितना 6 बजे आ तो अनंत अनंत जीवनी नाड़ी कहतो है अनंत पराक्रम करतो है बद्दू अनंत अनंत अनंत अनंत है तो पन जो दास पन ना होए तो अंक विना ना शून्य जीव छे एकड़ो ना होए पछी गम्मे एटला मेड़ा लगाड़ एकड़ो ना होए मेड़ा लगाए लगाए लगाए आखी पृथ्वी भरी नाखो एकड़ो ना होए तो एना जीव शून्य शून्य ज रहे अनंत मीणा इक्वल टू शून्य एक शून्य बढ़ मीणू पती जाए एटले जो दास पड़ा महाराज के बधु कहते हैं

अवीयक्षरधाम धीयवनिमा ऐश्वर्यमुक्तो लयीशोभे अक्षरसात सुंदर छवि लावण्यतेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगटजे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालुने नित्य नमो सर्वावतारी हरि। मंगलमूर्ति महाप्रभु

अखंड सौभाग्य गणी अमारा इच्छा उरे एज प्रभु जी मारी स्मृति रहो अंतर मात मारी। श्री स्वामी

योगी जी महाराज नी जय, प्रमुख स्वामी महाराज नी जय, दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। मुक्तानंद स्वामी ने महाराज नी प्राप्ति थई छे, एनी प्रतीति थई, अने प्रतीति थई एटला माटे एमने भगवानी आरती उतारी। जय सद्गुरु स्वामी आरतीनी शुरुआत छे, अने एज आरती में प्रत्येक आटे भगवानी जे मूर्ति निरखता निरखता आर्त हृदय मुक्तानंद स्वामी जे प्रार्थना करी छे, आरती उतारी छे, महाराजनी मूर्ति निरखी छे, अने एमने प्रत्येक आटे आटे महाराजना स्वरूपनी विशेष प्रतीति थती जाए छे। जय सद्गुरु स्वामी थी करी अने छेल्ले कहे छे पुरुषोत्तम प्रगटनू जे दर्शन करशे, काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे। स्वामीनारायण संप्रदायनी अंदर, समग्र संप्रदायनी अंदर मुक्तानंद स्वामीए बनावेली आरती भगवानना स्वरूपने निरखवानी एक रीत, अने आरती उतारता है त्यारे केवी रीते आरती उतारवी एनी अद्भुत वात अपने आमां शीखवाड़ी छे। जे दिवसथी मुक्तानंद स्वामीए आरती उतारी ते दिवसथी अद्यपी पर्यंत संप्रदायनी अंदर तमाम संतो भक्तो महाराजनी आरती उतारता ए छबीने अंतरमां उतारी, अने जेवी मुक्तानंद स्वामीने प्रतीति थई हती एवी प्रतीतिनी प्रार्थना करे छे।

रे भगवान तो भक्तों ने वश छे, प्रेम भक्ति जेने घटावे तेने रंग हरी राचे अने नाचे। महाराज तो आवी रीते रासमां सौने अद्भुत सुख आपे छे। बधा ज खान पान के थाक बधो भूली गया, स्वामीनुं स्थूल शरीर अने एनाथी हवे फरातुं नथी ने, एटले एणे एक युक्ति करी।